हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति।

वाहेगुरु वाहेगुरु जी बोलो, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जी बोलो। सत्य नाम सत्य नाम जी बोलो, सत्य नाम बोलो, सत्य नाम सत्य नाम जी बोलो। नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो, नित्य नित्य जपिए।